महूर्त देख के कर दे। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे जां कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा काम होवे ता इंसान सारिया तो पहला दिन देखदा है, तारीख देखदा है, महीना देखदा है, साल देखदा है, मुहूर्त देखदा है। ए काम इस महीने

राज मिलक जोबन ग्रहसोबा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह केंद्र ने कारण अपना कार सोबा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चा नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

एक पासे वाल खलार के औरत पई रोंदी है जिदे सिर दा साईं चला गया ओदे दुख नूं कौन समझ सकदा है। साहब जी धन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने औरत भी पति नाल ही सोंदी है जद तक पति जिउंदा है आदर सारे दिंदे ने पति ना रवे ते दुनिया विच जीवन जीवना बड़ा औखा हो जांदा है।

बंके कहते ने पति जिन्ना दे पति मर गए जिन्ना वापस नहीं आना उन्हां औरतां दे बारे साहब जी कहते ने तेन क्यों रहन विहानी उन्हां दियां रातां हुण किवें बीतन क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहब जी बाणी विच बयान करदे ने ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

कदी हसो ना, क्यों? मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तन गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन

कर देंदी इस वास्ते के है कि मां बाप नियामत ने विछोड़ा किसे दा भी पवे विछोड़ा सहना बड़ा औखा है मां मरे प्यो मरे पुत्र मरे पत्नी मरे चाहे पति मरे पर साहब जी कहंदे ने ए भी सच है मरना जरूर है ए भी सच है कि दुख सहना बड़ा औखा है इसे वास्ते ए बाणी दिती है कि परमेश्वर दा सिमरन करो दुनिया नु नाशवान समझो ताकि इस दुख नु तुसी सह सको ए समझ सको ए हुक्म सी जिड़ा आया है उन्हें जाना जरूर है एक दिन असी भी जाना है ताकि दुनिया दे नाल इन्ना मोह ना करिए।

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान ये चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावा, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। ते इंसान लड़ाइयां जितदा है, तरक्कियां करदा है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है। ए भी कहंदा है हों मारो हों बंदो छोड़ो मुख ते एव पबाड़े। मुख कहंदे ने मोह नूं, मोह तूं ए भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल भी सलाह करके सौंदा है, पर उदों ही पता लगदा है।

राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हार्यो अनक बहु पाती छोटे कथू नाही एक बात सुनता की ओटा साथ संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निर्वाणी।

ये पावन शब्द पावन राग साडे सत्कार योग प्रोफेसर साहब प्रोफेसर अमर सिंह जी भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी जो भाई साहब भाई दया सिंह जी पटना साहब वाल दे प्राता साहब ने वो भी गुरु की हजूरी विच सुशोभित ने साडे हंसलो तो आए दलजीत सिंह जी वैनकूवर तो वीर जी आए ने तो बड़ा दर्शनदार संगत दे होए ने तो संगत वालों हुक्म आया सी कि राग 10 मिनट जरा ज्यादा लाने ने तो ये सोरठ राग दे विच आप जी ने शब्द सरवण किया है तो आओ दो तीन रीतां जरूर गायन करनिया सन पर संगत वालों हुक्म है कि एक दो रागां दी बंदिशां जरूर सरवण कराउणियां हन आओ इस तों पहला एक रीत फिर गायन करांगे पहला आओ एक नौ मात्र दी बंदिश है आप जी दे सन्मुख बहुत ही सुंदर है पुरातन चीज है और बड़े प्यार नाल सरवण करो।